जी जनाब, गल करें दे पे आसे वर्तावे दी, ता वर्तावे दे सही बहुत सारे तरीके हैं। एक बैद नाल गम खुशी दी विच शरीक थीवन, एक बैद नाल ज रहे प्यार मुहब्बत वर्तावन दे आदन के इंसान अगर एक दफा मुहब्बत वर्तावन दा इरादा कर छोड़े ना, तो इंसान बहु कुछ कर सकदा। हीले बहाने एक बैद नाल मिलन दे बहु सारे तरीके हैं। कहंदे पुछने ते लगे गए कै पुत्र दी मंगनी की थी, उक मुबारक देवन लगे गए। नाल लाली गवांडण कोलू हाल अवाल पूछ गिदा, ए जरे तुसा यानी के पहले इवें हाल अवाल वंडावण दे कई तरीके होंदे कि अज तो बड़ी बेहतरीन सफाई थी पई है, ए जरा हे झाड़ू तुसा कहंदे कोल गिदा है, ते ए किवें बनाया है, ते उंदे इलावा त्वरे जरा हे त्वरे घर दी विच डाडी जरी हे बेहतरीन यानी के जरा हे अंदाज है किवें है, मुख्तलिफ गालियां होंदियां हिक बैद नाल मुहब्बत वर्तावण दे। आज भी अगर असा इख्तियार करूं तो कर सकते हैं। सजनो आज हिक जरे ना रल के सुनने हैं हिक सराई की गीत, उन्दे बाद वाल अपनी गाल मुहार दा सिलसिला जारी रखे सू।

ओ भिरा ओ भितरीजे ओ पितरेर ओ चाचे जेहड़े निके निके गालां दा ख्याल रखेंदे हन। अजकल तां निके निके गालियां ते रूस वेंदे हन। सजणो उम्मीद करे ना कि तुहाको अज दा प्रोग्राम पसंद आया होसी। गाल इह सजणो कि पुराने गालियां पुरानियां मुहब्बतां पुरानियां रीत रिवाजात को अपने गालियां दे अपने जिंदगी दे विच गिन के आओ ताकि जेहड़ा है असाडी जिंदगी खुशियां कोल भरी जाए दूजां दी भी जिंदगियां दे विच खुशियां आवन ना के हिले बहाने ला के दूजों को असा जरा है ट्रक दी बत्ती दे पिछू ले रखूं कि मैं तेरा काम करे सा मैं तेरे नाल इतनी मुहब्बत करे ना हाँ जबकि ये एक हिला है एक बहाना है। अपने आरजे अपने दोस्त अपने बिरा को आदिल सियाल को अगले प्रोग्राम ते इजाजत दो। अपना ख्याल रखो अपने इर्द गिर्द रावण वाला ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।

अच्छा साजन वाई च हकीमाबाद के शान कॉस्मेटिक स्टोर वाला सरस्ता सो द इश्मा टूल प्रोडक्ट मिलावी की खजी हाय हेलो इकराम भाई संग तबियत दिखा दे बराबरी इकराम भाई हाफिज जहीर भाई था नाइट प्रोग्राम भरोसा बस मुझे

बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। हमें हम सब इस चीज से गुजर के आ चुके हैं, गुजर रहे हैं। बाज दफा आप पे वक्ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप इन तमाम चार चीजों को नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है और आप थोड़े से आजाद होते हैं तो हर एक शख्स ये करने की कोशिश करता है। अब चूंकि हमारा माशरा इस तरह से बन चुका है, यहाँ पे लोगों की अयाशी के यही असबाब है तो वो इसी को ही इस्तेमाल करके करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब का कानून की अवेयरनेस से क्या लेना देना है। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि ये जो हमारे जो एक्टिविटीज हैं, हमारी यूथ की जो एक्टिविटीज हैं, शॉर्ट टाइम प्रॉफिट के पीछे भाग रही है। कोई सोना खरीद रहा है, कोई चांदी खरीद रहा है, कोई ट्रेडिंग में लगा हुआ है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई जो है डबल शाह के हत्थों चढ़ गया है। शॉर्ट टाइम पैसे, बगैर मेहनत के पैसा कमाने की एक सोच बन गई कि मेहनत किए बगैर पैसा है और बहुत आए, जो कि मुमकिन नहीं है। हाँ, एक आदमी की किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है कि जिसको बगैर मेहनत के बहुत सारा पैसा मिल जाए, लेकिन दुनिया का ये दस्तूर नहीं है, ये निज़ाम नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम नहीं है। जो दुनिया का दस्तूर है, निज़ाम है, जो उसूल है, वो मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप मेहनत करेंगे, साथ में किस्मत आपकी होगी, लेकिन मेहनत शर्त है। मेजॉरिटी यही होगा कि मेहनत के साथ आपको मिलेगा। वो एक अलग बात है, किसी का जो है वो जिस काम में कोई हाथ डाले उसका वो कामयाब हो जाता है, और कोई कोई बेचारा हर कामयाब चीज में भी हाथ डालता है तो वो नाकाम हो जाता है। वो किसी किसी के साथ ये किस्मत जुड़ी हुई है, लेकिन ये हर जगह ये चीज हमें ये उसूल नजर नहीं आता, ये एक्सेप्शन है। बाकी मेहनत शर्त है, आप मेहनत करें, अपनी कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। फिर मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ टांग के लोगों को कि इन हालात में अगर कोई एक जवान मेहनत करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो वो काबिल-ए-दाद है कि इन हालात में, टांग के आजकल के हालात में, कि डी खान में और टांग से बाहर जितने भी लोग रहते हैं वो टांग आना मुनासिब नहीं समझते, यानी उनको उनके लिए मुनासिब नहीं है कि वो टांग आए। इतना रिलक्टेंट है लोग, इतना डरते हैं। मेरा एक दोस्त है, वकील है, उसने मुझे पिछले दिनों मैसेज किया कि यार कभी डी खान, मैं पिशावर से आ रहा हूँ, पिशावर में होता है वो प्रैक्टिस वहां करता है, तो मैं डी खान आ रहा हूँ, तो मैं 4-5 दिन यहाँ आऊंगा तो तुम डी खान आ जाना, तो वहां गपशप भी लग जाएंगे, कोई खाना शाना भी साथ खा लेंगे। तो मैंने कहा यार मुझे बुला रहे हो तुम, वैसे छुट्टियों प्यारो टांग का। उसने कहा यार खुदा का नाम लो, टांग डी खान रोड, टांग का रोड है सही कि मैं वहां टांग का हूं। यानी लोग, अब वो एक आम सा मतलब छोटा सा वकील है मेरी तरह सा, ठीक है 2-3 साल उसकी प्रैक्टिस है, अब कौन उसको जानता होगा है क्या, लेकिन वो उसके जहन में भी इतना डर सवार है कि यार, और खुद उसका ताल्लुक भी वजीरिस्तान से है, यानी सारी जिंदगी जिन्होंने जंग देखी है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों के जहन में ये इमेज है जो बाहर रह रहा है, और अब सोचें कि टांग के लोग किस जहनी कोफ्त का शिकार होंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाहर शहरों में रह के रात को निकलना गवारा नहीं करते कि जी हालात खराब है, तो टांग के लोगों का सोचें क्या हालात होंगे, या वो किस जहनी कोफ्त से, किस जहनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। अब ये सारी कहानी सुनाने का मकसद क्या था, ये सारी बात करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि इन सारी चीजों का एक जहन पे, और खासकर मर्दों के जहन पे एक इम्पैक्ट है हमारे माशरे में, चूंकि खवातीन हमारे माशरे में, वो एक अलग बात है, घरों में रहती हैं, बहुत कम जॉब्स करती हैं, ज्यादातर खवातीन घरों में होती हैं, तो मर्द बाहर आता है तो बाहर एक्सपोजर उसको करना पड़ता है इन तमाम हालात वाकियात का, बम धमाका होगा, मरेगा मर्द, तो उसको बहुत सी तकलीफ का सामना है। अब इस सारे सिस्टम में, इस सारी तकलीफ के बाद जब वो शाम को घर जाता है तो उसको जो एक जहनी सुकून मिलता है वो उसके घर के हालात के होते हैं की वजह से होता है। यानी अगर उसके पास अच्छी बीवी है, उसके घर की अच्छी खवातीन है जो ख्याल रखने वाली है, खासकर शादीशुदा अगर अब हैं तो आपकी बीवी बहुत डिपेंड करती है कि वो कोऑपरेटिव है, वो आपके साथ चलने को तैयार है, आपके मुश्किल में, दुख दर्द में आपको समझने की तैयार है, तो ऐसी सूरत में फिर ये होता है कि जी आप घर से एक जहनी सुकून हासिल करते हैं। आपको सारे दिन के, अगर आपके बच्चे हैं और सेहतियाब हैं, आपके घर में बीवी है वो ख्याल रखती है, तो वो सारे दिन की जो थकान होती है वो आधी खत्म हो जाती है। और अगर आपकी बीवी ना फरमान है, वो ख्याल नहीं रखती, तो फिर वो चीज आपकी डबल हो जाती है, टेंशनें, दुख, तकलीफ, परेशानियां आपकी बढ़ जाती है। बहरहाल, तो ये आज इसी थोड़ा सा टॉपिक पे, कानूनी पहलुओं पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स आई हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए आज का प्रोग्राम गुजरेगा। बाकायदा आगाज से पहले आप हमारा नंबर नोट कर लें,
09635111488 09635111488। इस पे आप हमें कॉल करके इस प्रोग्राम के दौरान आपका कोई भी अगर कानूनी मसला है, आपको किसी किस्म की कोई कानूनी दुश्वारी का सामना है, आपको कोई भी मसला आ रहा है, आपको आपका अगर आप कोई केस चल रहा है उसके मुतालिक आप कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आपको कोई और मालूमात हासिल करनी है, कुछ भी कानूनी कुछ भी, तो आप इस प्रोग्राम के तवसुत से हमें इस नंबर पे 09635111488 09635111488। यानी अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ लेते हैं हमें समझ नहीं आती, आप उर्दू में बताया करें, तो यह 09630963511488 5114888 इस नंबर पे आप हमें कॉल करके अपना मसला हमारे सामने रख सकते हैं।

इसमें जो पहला बुनियादी नुक्ता सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया वो मैं पहले बयान कर चुका हूं कि जबरदस्ती की खुलाब नहीं चलेगी। अगर फैमिली कोर्ट्स खवातीन के दावा तनसीख निकाह डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को खुद ही खुला में तब्दील बदल देती थी, जिसका नुकसान ये होता था कि औरत को अपना हक मेहर और जेवर वापस करना पड़ता था, जो मैं आपको बयान कर चुका हूं। अदालत औरत की मर्जी रजामंदी के बगैर किसी केस को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। अगर शोहर ने जुल्म किया है या दूसरी शादी कानून के खिलाफ की है तो निकाह खत्म होगा, खुला नहीं, और औरत अपना पूरा मेहर, प्लाट, सोना रखने की हकदार होगी। ये बड़ा अहम नुक्ता सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बयान किया, जिसपे मैं तफसीलन आपको समझा चुका हूँ पहले नुक्ते पे। दूसरा नुक्ता, नाफरमान बीवी जैसे अल्फाज पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। अब ये नहीं है कि एक बीवी है नाफरमान और आप उसके लिए नाफरमान वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन बगैर किसी सबूत के, बगैर साबित किए सिर्फ नाफरमान बीवी कह देना ये काफी नहीं है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे माशरे और अदालतों में खवातीन के लिए नाफरमान, डिस ओबीडियंट या खुद साख्ता मफरूर, सेल्फ डिजर्टिंग लेडी वो ऐसी खातून, खुद साख्ता मफरूर ऐसी खातून जिसको सिर्फ अपना आप नजर आता है, उसको ना अपना शोहर नजर आता है ना अपने बच्चे नजर आते हैं, वो सिर्फ अपने आप पे तवज्जो देती है, उसको बाकी अपने खानदान उससे कोई भी गर्ज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे खवातीन के लिए। अदालत

के इस पे रिमार्क्स यह है कि जी जबान सोच की अकासी करती है। अदालतों को ऐसे अलकाबात से गरेज करना चाहिए जो खवातीन की तजलील करें और उन्हें एक मखसूस इखलाकी पैमाने पर रखें। औरत की इज्जत नफ्स और खुद मुख्तियारी मुकदम है। लेकिन यहां पर एक और बात भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बारे में बड़ी अच्छी बात की कि आप खवातीन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करें कि वो यानी नाफरमान है, वो बदकिरदार है, वो गलत है, वो गंदी है, झगड़ालू। गलत अल्फाज आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने दावाजात में इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब इससे हम ये आंसर भी ले सकते हैं कि जिस तरह खवातीन आती हैं अदालतों में और वो भी बहुत बार दफा अपने शोहरों के बारे में गलत अलकाबात का इस्तेमाल करती हैं, शराबी है, जानी है, जानवर है, घटिया है, बेगैरत है, गधा है, मैंने ये सारे अल्फाज पढ़े हुए हैं दावों में, ना मर्द है, मतलब ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो मैं यहां पे बयान नहीं कर सकता। ये तो नॉर्मल अल्फाज हैं जो मैंने आपको, मैंने लिखा कि मेरा शोहर गधा है, मैंने पढ़ा एक दावे में लिखा हुआ था कि मेरा शोहर गधा है, गधा। ये किसने लिखा था, मेरा शोहर वैश्य जानवर है, तशद्दुद करता है, ठीक है, मारता है, पीटता है, शराबी है, जानी है, जुआरी है। एक ने लिखा हुआ था मेरा शोहर बच्चाबाज है। तो ये इस तरह के अलकाबात अगर लड़की के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, तो अगर आप, एक तो है कि अगर एक खातून ऐसा ऐसी है तो फिर तो आप इस्तेमाल करते हक बजाने में आप साबित कर सकते हैं। अगर आपका मर्द ऐसा है तो फिर तो आप अगर इस्तेमाल करते हैं साबित कर सकते हैं तो हक बजाने में। लेकिन सिर्फ अपना केस को मजबूत करने के लिए और शोहर से जो है ना वो चीजें तलाक लेके निकलवाने के लिए इस तरह के अल्फाज शोहर के लिए इस्तेमाल करना, ये भी इंतहाई नामुनासिब है।

अब जो केसेस बचे कुचे 1-2% मर्दों के हक में होते थे उनके भी होने के चांसेस कम कर दिए गए हैं। तो आप बड़ा एहतियात बरतें, अपने रिश्तों को संभाल के रखें, ख्वातीन के साथ एक बेहतर सलूक करें और ख्वातीन को भी चाहिए कि वो इस चीज का नाजायज फायदा ना उठाएं। तो हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। इजाजत दीजिए अपने मेजबान खुबाब अली अराई एडवोकेट को। अगले इतवार दिन 12 बजे तक इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।

0: हैं, ब्रीडर कहते हैं, सो वो हकीम साहब खुद खड़ी नहीं हो सकती,
1: ऐसा ही है,
0: और हम वो चीज खाते हैं। तो ये बताइएगा कि फार्मिंग मुर्गी जो है रेगुलर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हकीम साहब, बल्कि आजकल हर जगह इस्तेमाल हो रही है,
1: पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है,
0: तो इसका कोई नुकसान है हकीम साहब?
1: इसका अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान है। उसकी वजह है कि वो ये बात ठीक है, और एक दो दफा दुकानदारों से इस पे बहस भी हुई है कि वो उस पे पानी के छींटे मार रहे हैं।
0: हाँ, ये
1: कि यार ये जरा थोड़ा सा फ्रेश हो, तो वो मैं कि इसको पानी डाल के इसको उठा रहा है कि यार खड़ी हो जा, गाहक आ गया तेरी मेहरबानी। मैं कि यार ये बीमार है, उससे खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और उसी का गोश्त हम खा रहे हैं,
0: जाहिर सी बात, और बड़ी शौक से,
1: और शौक से। और दूसरा ये है कि जरा ये महंगी हो जाए तो लोग किलोओं के हिसाब से लेना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं शॉर्ट हो रही है, पता नहीं क्या,
0: ऐसी बात है, ऐसी बात।
1: हालांकि इसके मुकाबले में अगर हम बड़े गोश्त को लें, स्पेशली कट्टे के गोश्त को,
0: हाँ,
1: तो वो ज्यादा बेहतर है।
0: अच्छा, कट्टे यानी गाय का गोश्त है, भैंस का गोश्त है, वो खाएं वो बेहतर है।
1: देखिए बिल्कुल, गाय का दूध जो है वो एक नंबर है गजाइयत में,
0: ठीक है,
1: माँ के बाद अगर कहते हैं कि नेमुल बदल है
0: तो वो गाय का दूध ठीक हो गया,
1: ठीक है। लेकिन गाय का और भैंस का गोश्त जो है ये उतना सूटेबल नहीं है,
0: ठीक है,
1: ये जूद हजम नहीं है, देर हजम है, कब्ज करता है, हवा जिसम में री हवा पैदा करता है, और इसी तरह ये शेवर मुर्गी का है,
0: ठीक है। ये भी रेगुलर नहीं खानी चाहिए किम साहब?
1: नहीं, रेगुलर नहीं,
0: बड़ा गोश्त,
1: बड़ा गोश्त अगर आप खाते हैं बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आप सब्जी का इजाफा करेंगे।
0: अच्छा, आप किसी सब्जी में डाल,
1: किसी सब्जी में डाल लें, टिंडे, घिया, कद्दू, तोरी, करेले, कुछ भी डालें।
0: अच्छा, हफ्ते में एक बार तो खा सकते हैं?
1: बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन जब आप एक तो सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके बादीपन को खत्म करते हैं, और दूसरा इसकी तबीयत को मोतदिल कर दे।
0: अच्छा हकीम साहब, किसी हकीम के पास जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो सबसे पहले वो आपको बड़ा गोश्त ही मना करेगा,
1: वो इसी
0: परहेज में,
1: हाँ बिल्कुल, उसकी वजह है कि ये गोश्त थोड़ा सा देर हजम होता है, बादी पैदा करता है,
0: ऐसी बात है।
1: और दूसरी बात ये है कि हम लोग फिर उस तरीके का उससे तैयार भी नहीं ना सकते, हम लोग मिर्चे मिसालों की ज्यादती करते हैं, लेकिन जो चीज उसमें चाहिए अदरक वगैरह और ये सारी चीजें जो उसकी री को खारिज बदले उसकी बादी की तबीयत को, वो हम कम इस्तेमाल करते हैं।
0: अच्छा हकीम साहब, मतलब इसका ये हुआ कि अगर एक इंसान के अंदर पांच बीमारियां हैं
1: जी,
0: तो वो पांचों मैदे की वजह से भी हो सकती हैं?
1: बिल्कुल हो सकती हैं। मैदा अच्छा। तो आपका मेन है ना, मेजर किरदार जो बॉडी में है वो आपका मैदा ही है,
0: ऐसी बात है, हां जी, हां जी,
1: उसकी बेस पे आप चल रहे हैं, आपके वजूद की ग्रोथ है, आपकी सेहत है, वो सारी आपकी मैदे की वजह से।
0: अच्छा, वो मैदे की वजह से ही है,
1: आपके चेहरे की ग्लो है, आपके चेहरे पे रौनक है, वो आपके मैदे की वजह से।
0: अगर आपका मैदा दुरुस्त नहीं है तो आप भी दुरुस्त नहीं होंगे, ऐसी बात है, आपके मैदे का भी मसला होगा, आपके चेहरे की रौनक भी नहीं होगी,
1: ऐसा ही है।
0: अच्छा, तो
1: आपकी हिज्जत बढ़ेगी,
0: ऐसी बात है। तो हकीम साहब, अगर एक बंदा अपने मैदे का इलाज आपसे करा लेता है
1: जी,
0: ठीक है, तो वो मतलब आधे से ज्यादा मसले तो उसके हल हो जाएंगे।
1: देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि मैदा जो है वो मेन एक किस्म का कह ले कि हाँ, जिस तरह हम घर में दाखिल होने के लिए मेन डोर का इस्तेमाल करते हैं कि मेन दरवाजा है,
0: ऐसी बात है,
1: हम जाएंगे, तो मैदा जो है ये भी बॉडी का मेन एंट्रेंस है,
0: मेन एंट्रेंस है।
1: अब इसके लिए सबसे पहले इसका ठीक होना जरूरी है,
0: बिल्कुल,
1: इसने ही आगे वजूद के जो हिस्से हैं उनको इसने उनका मतलूबा जो उनका हिस्सा है वो उनको देना होता है, यानी उनको गजाइयत देनी होती है,
0: ऐसी बात है,
1: ताकि वो ग्रोथ करें, वो बेहतर हो, और उसके बाद जो बचता है वो फुजले की शक्ल में, स्टूल की शक्ल में, जिससे खारिज हो जाता है,
0: बिल्कुल ऐसी बात है।
1: अब मैदा अगर आपका ठीक है तो फिर तो आपको इतने मसले नहीं बनते, लेकिन अगर आपके मैदे में तेजाबियत, गर्मी, चाहे वो खुराक की वजह से है, चाहे वो आपके पानी कम इस्तेमाल की वजह से है, या कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी चीजें जो आर्टिफिशियल हैं या कह लें बाजारी हैं, और ये चीजें जब बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होंगी
0: ठीक हो गया,
1: तो वो फिर इसमें तसाबियत करेंगी, गर्मी करेंगी, और मैदे में गर्मी होगी तो आपके वजूद में हिद्दत होगी,
0: बिल्कुल ऐसी
1: बात है, उसका असर फिर आपकी पूरी बॉडी पे आएगा, स्पेशली खासकर आपके चेहरे पे जाहिर होगा, और इसीलिए मैदा तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है,
0: बहुत जरूरी है,
1: और इसलिए कहते हैं कि मैदा दुरुस्त तो इंसान
0: तंदुरुस्त, ऐसी बात है,
1: मैदे ही से आगे काम सारा चलता है, तो इसी वजह से ये पिंपल और जो ये दाने और ये चीजें सारी हैं, तो
0: है।
1: कोशिश कीजिए कि आप अपने मैदे की इसलाह करें, ताकि आपको ऐसी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े कि चेहरे पे दाने बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि उसमें से मुआद भी खारिज हो रहा

0: उसमें सोजिश है, दर्द है, वरम है, तो उसके लिए फिर आपको सबसे पहले अपने मुआलिज से मशवरा करना चाहिए और उसके बाद आप कोई भी देसी टोटका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि वो आपके लिए बिगाड़ पैदा करेगा, हो सकता है कि वो आपको राहत दे, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप एक दफा मशवरा जरूर कर
1: चले, ठीक है,
0: फिर आप अपनी जल्द का भी
1: बिल्कुल ऐसी बात है। सो बिल्कुल ख्वातीन हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अल शिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। सो समीन इकराम हकीम साहब ने आज बात की आपके चेहरे के बारे में, वो बहनें वो भाई जिनके चेहरे पर कील हैं, महासे हैं, छाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, छोटे छोटे दाने हैं, तो जनाब इंशाल्लाह आपके चेहरे पर जो मसाइल हैं बगैर केमिकल के इंशाल्लाह आपका इलाज किया जाएगा अलशिफा दवाखाने में देसी तरीका इलाज से। जिस बहन का भाई का चेहरे के हवाले से मसला है अपना देसी तरीका इलाज कराएं ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना झेलना पड़े, आपको कोई नुकसान ना झेलना पड़े, क्योंकि आपकी जिल्द बड़ी नाजुक है, क्योंकि अगर आपकी उम्र 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, 18 साल या 20 साल तक है तो आपकी जिल्द बड़ी नाजुक है। अपने जिल्द को केमिकल अशिया से बचाएं और देसी तरीका इलाज की तरफ आएं। इंशाल्लाह हकीम साहब कल मौजूद होंगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में।
2: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jaan Rang Aman.

रे मनना, कोई नशु महा मनन ऐसी सही नहीं रीच की है मेरा इसमें, सही रीच किया है आपके ऐसे में। चलता उसे खादो से बात उसे पढ़ो नाजवान को।

0: रहे होते हैं। तो ये है भाई अल्हम्दुलिल्लाह केसन, टाइम हर जगह लगता है। कब है एक्टिव अज़ा क्या होते हैं? जी जनाब, आपको बताते हैं एक्टिव अज़ा जो होते हैं, ये जो मैंने नाम आपके सामने उठाए हैं ये एक्टिव्स हैं। इसके अलावा नियासिनमाइड, इसके अलावा अल्फा आर्बोटिन, कोजिक एसिड, लिकोराज, ये सारे एक्टिव्स हैं। एक्टिव्स का ये मतलब होता है कि ये जब क्रीम के अंदर जाते हैं तो, या जब आप अपने स्किन के ऊपर क्रीम लगाते हैं तो ये इन्हीं चीजों ने काम करना होता है। लेकिन अब क्रीम बजाते खुद कुछ नहीं होती है, ठीक है जनाब, क्रीम के अंदर एक्टिव्स को शामिल किया जाता है और वही काम करते हैं। तो आम क्रीमों के अंदर जहां पर चार एक्टिव होते हैं, यहाँ पर 8 से 9 एक्टिव शामिल किए गए हैं। सो एक ताकतवर जो है फार्मूला बन गया है। और आप लोगों को ये कौन से और कितने सारे फायदे पहुंचाएगा आप सोच रहे होंगे, सीरम फार्मूला है तो इसमें ऐसा क्या है जो हमारे लिए बेहतरीन है? तो आपकी जिल्द का ये मुकम्मल इलाज है। स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये उनका मुकम्मल इलाज है। और प्रॉब्लम कौन से होते हैं? दानों का निकलना, दानों के निशानात का रह जाना, दाग धब्बों का आना, छाइयों का आ जाना, ये मसाइल हैं। तो ये एक मुकम्मल इलाज है, ठीक है जनाब, मुकम्मल कंप्लीट हम जिसको कह सकते हैं, परफेक्ट इलाज है। इसमें मौजूद क्या है? इसके अंदर एजलेक और ट्रांजेमिक एसिड, ये जो है ये स्पेशली हमने ये जो है ना ये मेडिकल के बेसिकली फॉर्मुलेशंस हैं मेडिकल की, लेकिन इनके नेचुरल डेरिवेटिव्स होते हैं। यकीन कीजिए हमारी टीम ने इस क्रीम के ऊपर बड़ी मेहनत की है, ठीक है जनाब, और ये चीजें अभी तक किसी और क्रीम के अंदर मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर। मेडिकल की क्रीमों के अंदर तो हो सकती है, लेकिन जो स्किन केयर के प्रोडक्ट है उनके अंदर ये चीजें मौजूद नहीं है, जैसे कि एजिलिक एसिड है और ट्रांजेमिक एसिड है। ये लेटेस्ट रिसर्च है कि इन दोनों को अगर क्रीम के अंदर ऐड करके देते हैं तो जिद्दी से जिद्दी छाइयां भी उड़ जाती हैं, जिद्दी से जिद्दी छाइयां भी खत्म हो जाती हैं जब क्रीम के अंदर ट्रांजेमिक एसिड सीरम और एजिलिक एसिड सीरम, ये दो सीरम है, अगर ये क्रीम के अंदर होंगे तो ये जिद्दी से जिद्दी छाइयों को और दानों के निशानात को जड़ से खत्म कर देंगे। मैंने आपको बोला है कि ये एक ताकतवर फार्मूला है, और किन लोगों के लिए ये ताकतवर फार्मूला है भाई? जिनके बहुत गहरे दाग धब्बे हैं, जिनकी बहुत गहरी छाइयां हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही ताकतवर। दो सीरम सिर्फ इसलिए ऐड किए गए हैं इसके अंदर, एजिलिक एसिड, एजिलिक एसिड की, एजिलिक एसिड की एक क्रीम मिलती है मार्केट के अंदर, अगर आप पता करें उसका नाम है स्किनोरिन, ठीक है जनाब, ये मेडिकल की क्रीम है और उसकी कीमत है 800 रुपए, समझ आ रही है? और वो छाइयों के लिए इस्तेमाल होती है, वो मेडिकल की क्रीम है, डॉक्टर लिखते हैं, रिकमेंडेशन होती है डॉक्टर की, लेकिन उसके अंदर है क्या? एजिलिक एसिड है 10%, और हमारा हमने ये जो फार्मूला बनाया इसके अंदर भी एजिलिक एसिड 10% मौजूद है, ट्रांजेमिक एसिड 10% इसके अंदर मौजूद है। और ये इसलिए हमने ऐड किया है, ये स्पेशली हमने टारगेट किया है उन्हीं लोगों को जिनकी छाइयां खत्म नहीं हो रही भाई, जिनके दाग धब्बों के निशानात खत्म नहीं हो रहे। सो दो ताकतवर किस्म के सीरम सिर्फ इसलिए शामिल किए गए हैं इस क्रीम के अंदर के जिद्दी से जिद्दी और पुरानी से पुरानी छाइयों हम आपको खत्म करके देंगे, हम आपको क्या है कि जड़ से उखाड़ कर देंगे इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी छाइयों को भी, दाग धब्बों को भी, इन दो सीरम्स की मदद से, एजिलिक एसिड सीरम और ट्रांजेमिक एसिड सीरम, ये दो सीरम जो हमने अपने इस फार्मूले के अंदर ऐड किए हैं जो कि ऑर्गेनिक सोर्स हैं, ठीक है जनाब, यही जो सीरम जो है ये मेडिकली पाए जाते हैं, ठीक है जनाब, लेकिन ये हमने जो यूज किए हैं क्योंकि हम एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप लोगों तक लेके आते हैं, तो हमने जो सोर्स इस्तेमाल किए हैं एजिलिक के और ट्रांजेमिक के वो नेचुरल हैं। तो ये क्या करेंगे? दानों के निशानात को और छाइयों को जड़ से खत्म करने की मुकम्मल तौर पर अहलियत रखते हैं। अब ये चार सीरम है ना इस क्रीम के अंदर, ये सीरम वाली क्रीम है, तो चार सीरम हमने इसके अंदर शामिल किए, चार किस्म के सीरम में से दो तरह के सीरम जो है वो क्या काम करेंगे, स्पेसिफिकली पुराने दाग धब्बों को और छाइयों को खत्म करने के लिए। अब इसके अंदर रेटिनॉल को भी शामिल किया गया, रेटिनॉल ये भी ट्रांजेमिक, ये भी एक सीरम है, ठीक है जनाब, इसके सेपरेट सीरम भी मिलते हैं लेकिन हमने इसको इसी के अंदर ऐड किया है। तो इसका क्या मतलब है? जिल्द को जवान बनाना, ठीक है जनाब, रेटिनॉल सीरम जो होता है ना, ये बेसिकली सेल टर्नओवर पर काम करता है, आपकी स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं, ठीक है जनाब, सेल से मिलकर ही आपकी साख बन रही होती है, आपकी गाल बनती है, आपके चेहरा बनता है, तो ये सेल टर्नओवर बढ़ाते हैं और आपकी स्किन के ऊपर नए नई जिल्द आएगी। रेटिनॉल क्या काम करता है, कोलेजन को भी बढ़ाता है और नई जिल्द, नए सेल आपकी स्किन के ऊपर, जो स्किन आपकी डेड हो जाती है, मुर्दा हो जाती है, स्पेशली जहां पर छाइयां आपकी होती हैं, वो स्किन आपकी डेड होती है बिल्कुल, वहां पर जो है आपके सेल नहीं होते हैं या मुर्दा सेल पड़े होते हैं, सो डेड सेल पड़े होते हैं, तो ये बेसिकली उन सेल्स के अंदर जान डालेगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म का फार्मूला है और जो लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे वो 100% रिजल्ट हासिल करेंगे बगैर किसी साइड इफेक्ट के, कि उनके चेहरा जलने लगा है, उनके चेहरे के ऊपर दाने आने लगे हैं या उनके चेहरा या उनके गाल सुर्ख हो गए हैं। ठीक है जनाब, तो ये इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड है जो आपकी स्किन को सुकून देगा। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो आपकी स्किन की इरिटेशन को कम करेगा, यही वजह है इसके अंदर हाइलुरोनिक को हमने ऐड किया है, जो कि आपकी स्किन को जलने नहीं जलेगी नहीं, जो अक्सर लोगों को क्रीम्स के साथ मसला होता है, दाने निकलते हैं। तो जनाब ये सारे अज़ा अल्फा अरबुटीन के साथ, कोजिक एसिड के साथ रंगत को गहराई से निखार आएगी। ठीक है जनाब, गहरे तौर पर ये काम करेगा और इस आप क्रीम को जब लगाएंगे ना, केसन स्किन क्लियर क्रीम को जब आप लगाएंगे तो आपको आम क्रीमों जैसा नहीं लगेगा, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपका लेप जो है ना वो आपको गायब होता हुआ नजर आएगा। क्या करेगा ये फार्मूला कि ये मुकम्मल तौर पर क्रीम वही काम करती है जो आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाए, जो पूरी रात जिसका लेप सुबह उठे और उसका लेप आपके हाथ के ऊपर आ जाए ना, वो खाक काम करेगी जब क्रीम जज्ब ही नहीं हुई। तो ये एक एब्जॉर्बिंग फार्मूला है जनाब, और जब आप इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो ये आम क्रीमों से हटकर आपको लगेगी। विटामिन B5 को भी, विटामिन ई को भी इसके अंदर ऐड किया गया, सो एक परफेक्ट फार्मूलेशन हमने आपको प्रोवाइड की है। इससे पहले जाफरानी फार्मूला क्रीम आपके पास मौजूद है, इससे पहले जो है ग्लूटा वाइट भी क्रीम मौजूद है। ग्लूटा वाइट को हम कहते हैं कि जो कम उम्र की लड़कियां हैं वो इसको इस्तेमाल करें। ठीक है जनाब, जाफरानी क्रीम भी आप लोगों के पास मौजूद है और इसके साथ साथ अभी हमने आप लोगों को प्रीमियम क्लास प्रोवाइड कर दी है, प्रीमियम क्वालिटी के साथ केसन का स्किन क्लियर फार्मूला। तो जनाब इस फार्मूले को आपके शहर, आप डेरा में मौजूद हैं या टांक में मौजूद हैं या पहाड़पुर में मौजूद हैं, जितनी भी दुकानों से आप हमारी प्रोडक्ट हासिल करते हैं, जैसे पहाड़पुर के अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली शॉपिंग सेंटर, फ्रेंड्स एंड फैमिली शॉपिंग सेंटर, उसके बाद वसी सॉरी क्या नाम है अपना नवीद कॉस्मेटिक स्टोर, ठीक है जनाब, उसके साथ जिशान कॉस्मेटिक स्टोर है, अवेश जनरल स्टोर है, इन सब दुकानों के ऊपर और रंगपुरोड़ा के ऊपर हैदर मेडिकल स्टोर, हैदर मेडिकल स्टोर के साथ हसीब जनरल स्टोर, इन तमाम दुकानों के ऊपर भी आपको केसन की ये नई क्रीम, ये जो स्किन केयर फार्मूला ये मिलेगा। इसके साथ साथ दो क्रीमें हमने क्यों जोर इस फार्मूले के ऊपर हम दे रहे हैं और उन दो क्रीमों की इतनी बात नहीं कर रहे, ये बात नहीं है कि वो अहम नहीं है, वो अपनी जगह अहम है, लेकिन इस क्रीम की जितनी लोगों को जरूरत है, दो और क्रीमें जो है, एक हमने फेयर एंड लवली टाइप क्रीम बनाई है जिसका नाम है लवली फेस, ठीक है जनाब। तो जो डे टाइम क्रीम इस्तेमाल करते हैं जनाब वो इस्तेमाल करेंगे ये लवली क्रीम हमारी, जो आपको सिर्फ 250 रुपए में मिलेगी। और इसके साथ साथ हमने कोल्ड क्रीम भी लॉन्च कर दी है सर्दियों के लिए जनाब, बहुत सारे लोगों के जो है चेहरे अभी से खुश्क होना शुरू हो गए होंगे, सो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं केसन की ये जो हमने क्रीम लॉन्च की है। क्या नाम है इसका जनाब? केसन कोल्ड क्रीम, ठीक है जनाब। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम लल्की आले
0: जनाब, सादिक सादिक बिरासत नाल मौजूद हैं। सादिक भाई किवे आले, चंगे वे?
1: शुक्र है जी अल्लाह दी मेहरबानी, ठीक ठाक ही बैठे।
0: गालियां सुन दे बैठे वे सादे?
1: ये तेरी कंपनी जेरी मुकम्मल तौर पर पूरा घंटा सुन दा।
0: अच्छा जी, पूरा घंटा सुन दे वे?
1: हां जी, एक मिनट इंटर दे हिवे नु लग तो हुन केरी गल ठीक ही थी, मजा नहीं आंदा।
0: हाय क्या बात है, ऐसे लिसनर तो सब कुछ चाहिए, ये सारे गालियां तवज्जो ना सुनें, जितनी मेहनत ना सा प्रोग्राम करेने असान उतनी मेहनत लोग सुनें, क्योंकि सारे गालियां तुम्हारे फायदे दे होने। ठीक है सही, तुसा निकले वन
1: गालियां
0: लोग सारे गालियां सुन दे लेकिन दूजे कान को काट ही छोड़ देना बात मजा नहीं आता है जी कोई गाल अपने दिमाग च बल ही वे कोई मैं कोई दसो पहले
1: रोज दुकान कंपनी समान
0: नवी करीम हुंदे पुरानी ज़फरानी वधियो सी या ग्लूटा वधियो सी ए स्किन क्लियर फार्मूला जेड़ा ए मेरे ख्याल ते ना पहुंची सी या ए पहुंच गई तुहाडे कोल जनाब रिजल्ट दिती फायदा दिती जनाब लेकिन असा जितना गुड़ उतना मीठा असा तो एक ऐसा फॉर्मूला ही बना के दूं प्रीमियम आला किस्म आखो कि वाकई यार ई तो मैं चमका दिता है जी मेरे चेहरे को चमका दिता बिलकुल इस्तेमाल करे सो सारे स्किन क्लियर फॉर्मूले को तो पहली रात को ही जले सवेरे मुंह धोसो तो तुहाडा आईना तुहाडी ड्रेसिंग तुहाडा शीशा तो को जरूर कोई ना कोई गाल करे सी मैं तुसा की वो गाल मैं दसनी है शोध पता होवे तो स्किन क्लियर दर्द ताकत प्लस हाजमा कंट्रोल क्रीम इस्तेमाल करे सो इंशाल्लाह वाकई सारी तारीफा करे सो शो चो कि वाकई भाई कुछ है बढ़ाई है केसन कंपनी बढ़ाई है शुक्रिया जनाब नवाजिश शुक्रिया सादिक मौजूद हैं जनाब तांकोल गाल करने पे जो मैं अपने इलाके दे दुकानदार को आख्या जो भाई प्रोडक्ट तुहाडे किन्ने जनाब सारे कुछ प्रोडक्ट गए सब आखा गए बहुत वड्डा टांग दा होलसेलर है ते इन्हां दे कोल जरूर अवेलेबल कराओ ना तो उन्होंने कुछ दिन बाद सारे प्रोडक्ट कुछ रख के ते कुछ वापस कर दिते असा जे लगाल कीती ते भाई बार बहुत सारे मसले मसाइल हैं कुछ पेमेंटा दे रोले हैं कोई बह मसले भी हैं बहरहाल उन्होंने स्टॉक वापस कर दिता केसन दे समान जरे वापस आ गया असा के चलो ठीक है कोई नहीं मसला जुमरात अलवर सर जुमरात अलवर ओ भाई खुद तशरीफ लाए डेरा इस्माइल खान केसन शॉप अकबर प्लाजा ते इत्था के आखन लगे कि सही मैं टांग को लाया ते सारा सेटअप है टांग दे विच ता मैं उन्हों का आखे कि तुसा ते सारा समान वापस कर छोड़ावे कुछ दीवारा पहले सारे मामला चले बस उन्होंने समान नहीं आता जिस ऐसा मंगते नहीं आते इतनी डिमांड ही को नहीं आई लेकिन हूं तो सब कुछ समझ नहीं आती एक बंदा केसन का आंदा पे एक वहदा पे एक आ रहा है और एक जा रहा है एक आ रहा है और एक जा रहा है और सारे प्रोडक्ट केसन के और वही बंदा आज जुमरात वाले दिन कुछ 50,000 का सामान लेके गया केसन का उसने कहा हर चीज दो दो दर्जन एक एक दर्जन चाहिए क्योंकि सारा दिन आप हमारी दुकान के ऊपर ना केसन के कस्टमर आ जा रहे होते हैं तो ये है भाई अल्हम्दुलिल्लाह केसन टाइम हर जगह लगता है लेकिन लोगों को हकीकत सामने आ जाती है कि भाई और एक एक और बात उन्होंने की है वो भी मैं इस भाई की कॉल के बाद आपको बताता हूँ अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम
1: ਸਲਾਮ ਖਲੀਲ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੈ? ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ?
0: ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਠੀਕ ਠਾਕ?
1: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰਦੇਸੀ?
0: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਣ ਗਏ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਾਣ ਵੰਜੋ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਹੀ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਘੀਨ ਵੰਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋ ਘਿਨੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
0: ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਟਾਂਕ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ, ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਔਰ ਉਨਕਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਨੇ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਹਮ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੱਖੇਂਗੇ, ਕਿ ਆਪਕੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾ ਰਿਪੀਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਕੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਆਪਕੋ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
2: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਊ ਕੰਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਬਰ ਫਲਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ।
0: ਜੀ ਜੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸਰ?
2: ਇਰਫਾਨ, ਇਰਫਾਨ ਸਰ, ਇਰਫਾਨ।
0: ਅੱਛਾ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਵੇ
2: ਸਰ, ਪਰਸੋ ਚੱਕਰ ਮਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜੀ।
0: ਅੱਛਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨਾਲ?
2: ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਥਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ
0: ਕਰੀਮ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਜੈਂਗ ਛੋੜੀਏ ਤੇ ਜੈਂ ਪਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
2: ਜੀ ਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ?
0: ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਕਿਨ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਥਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ?
2: ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਜੁਮੇਰਾਤ, ਸੋਰੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਲਵਾਰ ਦੇ ਅਸਾਂ 4 ਵਜੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ,
0: ਖਤਮ ਥੀਂਦੀ ਹੋਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਕਲੀਅਰ ਥੀ ਸੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲੀਅਰ ਥੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮ ਜੇ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਨੀ ਥੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਿਆ ਵੇ, ਸਮਝੋ ਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਕੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ।

0: दे रहे सही, ठंडी हवा चले देंगे ठीक है
1: सही।
0: बाकी लवली क्रीम जी लवली फेस देना सारी क्रीम है सही, ओ बो अमेजिंग क्रीम है, डी कुलावर दी क्रीम है, रात को ला सकते वे कितने शादी फंक्शन ते वेंदे वे ते मेकअप नहीं वे करना चाहते तो सिर्फ ऊ को लाओ ते बस सुर्खी ते पाउडर लावण दी जरूरत ही कोई लवली फेस होनी तो जरूरी है ना सही
1: सीरम
0: क्रीम लावण आली भाई खावण आली नहीं लेकिन खुशबू
1: समझे केसन की कोई आइसक्रीम है
0: अच्छा इंशाल्लाह एक दी ओ भी आवे सी आइसक्रीम ही सारे आवे बड़ी मेहरबानी जनाब शुक्रिया खूबसूरती के नया सफर।

0: जी जनाब, खूबसूरती का नया सफर। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मौका देंगे उन्हें। अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है
0: जनाब? क्या हाल है मोहतरम? अच्छे हुए, ठीक ठाक से ही। शबीर उस्ताद सनल केच कुल मौजूद, इनके जी सारी आवाज साफ आनी पाई है सही?
1: जी जी क्लियर आनी पाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुबारकबाद। पंजाब एमपी साहब का नंबर साडा कुल ही सही है, कि जरा शराब का नहीं पिया था। मेरी तरफ उम्र मुबारक हो, अल्लाह पाक मुसलमान को देवे के उस दे उम्र मुबारक अहले खाना को, जरा है ना सारे अहले खाना को उम्र हाजी सादा नसीब अता फरमावे।
0: जी आमीन आमीन सुमा आमीन। था पर लो तोरे नजदीक थी मैंने पहाड़ पूर की तरह परते तो नहीं मेरा ख्याल है जी।
1: सारी चारी हाई कल छह दफा लगे वही जो गड़ी कोले कोले की कम गया खरीद मेरा आप मिलवेर से बात है। उसका कोई प्रोग्राम है सही जो कल ऐसा शायद निकल वही विजिट करे सो नजर आसान तक थे मीने फेर तक सारी लिसनारी दिन सारा बाकी सब स्किन कलर जरा माशाल्लाह जरा है ना पहुंच चुकी है सभी नवा ब्रांड है चार ताकत हिस्सा है लाजमी डाले जो हो जा है ना हर कोई निकी सुखी जो भी हर जो सी या पुरानी कोई कोई कमी बेची स्कीम रह गई सी या दिल दी जो चार ताकतों को बच न सकती।
0: इंशाल्लाह चार सीरम ताकतवर किस्म दे एक्टिव जे के आज तक कोई कंपनी ऐड नहीं कर सकी, एक को ज्यादा नहीं करेंगे ठीक है ना। एक असर चार ते ओ जे लोगों ने नाम ही हूं सुने होसन इतने तक के तुसा दा तुसा जेरे कंपनियां बनावण आले क्रीमा हैं ना जेरे नुमाइंदे सब सुनदे पे होसे उन्हां ने भी इना सीरमां दे ना हुण सुने से लोग सिर्फ ग्लूटाथियोन सीरम जानदे ते विटामिन सी ते वाइटनिंग सीरम जानदे, इन अलावा लोगों को नहीं पता होंदा। ते यकीन करो लिसनर ते लिसनर मैं आंदा के कंपनी दे नुमाइंदा को ही पता ना हो सी कि ए ऐसे सीरम आ चुके ने जेरे की जड़ को खत्म करन दे चाइयां को या को साथ एजलिक एसिड ट्रांजेमिक एसिड ठीक है जनाब, ए उन्हां को पता ही ना हो सी जेरे की असा तो को क्रीम बढ़ा के त्वरे तक पहुंचा दी थी ऐसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, क्योंकि ये जरा दाग धब्बे हैं ना ये एक महीने के मारे में खत्म थी
0: जड़ को खत्म करने की सलाहियत रखे सीरम पुराने को पुराने दाग धब्बे छाइया को जड़ को खत्म करना सही जिम्मे शिफाए दर्द दर्द को जड़ को खत्म करें ना सही
1: शिफाए
0: दर्द सर। इंशाल्लाह छाइया दाग धब्बा का एक बहुत बड़ा फार्मूला पेश कर दिता है।
2: It's 5 o'clock.
3: It's 5 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhon Rang Amar.

भाइयों ने और भाभियां जो थी उसके उनकी शादियां भाइयों की होगी तो वो भी बार बार ताने देने लगे, हाँ एक घर नहीं बसा सकी, घर नहीं तो सबर कर लेती। तो ये क्या हुआ कि ये वापस घर मतलब आ गई और घर वालों से कहा कि मेरी तलाक नहीं हुई, मुझे शोहर ने ये कहा था कि तुम जाके देख लो कि तलाक याफ्ता औरत के साथ क्या होता है। थोड़ा सा सबर, थोड़ा सा हौसला, हिम्मत करके उसका घर बच जाता है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा करके मर्द का गुस्सा कितना रहता है, 2 मिनट का बस, उसके बाद तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो फिर वापस आ गए और शोर ने उसको माफ कर दिया। कहते हैं कि मतलब उसने कहा कि मैं कोई आपको दुश्मन नहीं हूं, थोड़ा सा हौसला होता है, मर्द गुस्से का तेज होता है, लेकिन आप हौसले और हिम्मत से काम लेना, मर्द तो बड़ी साबिर होती है, औरत तो बड़ी साबिर होती है, शाकिर होती है। तो एक और बात कि मुझसे रह ना जाए, तो अजान भी हो गई है, मेरे ख्याल में टाइम भी पूरा होने लगा। बहरहाल एक बात आपसे करनी है, एक शोहर एक बीवी ने माँ से कहा कि मैं इस शोहर से तंग हूं, ये बड़ा बदतमीज है और बदअखलाक है, पता नहीं कितनी कितनी उसने इल्जाम लगाए, कुछ सच थे कुछ झूठे थे। बहरहाल तो माँ ने उसे कहा कि बेटा ये ले लें चूरन, ले लें चूरन, मतलब चूरन नहीं बल्कि सॉरी जहर ले लें, और ये जहर ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच डाला करें इसके खाने में, तो जब ये खाने में शर्ग तो जो कुछ महीने गुजरेंगे तो ये खुद मर जाएगा, आपको मारने की जरूरत नहीं है। तो माँ ने उसको जहर दे दिया, ठीक है, और वो एक एक चम्मच, लेकिन माँ ने साथ नसीहत भी की कि बेटा मेरी नसीहत है कि शोहर से मोहब्बत से एहतराम से प्यार से मिलना है, और नाकदरी नहीं कि जो कहे उसकी बात मान लेनी है, क्योंकि इसके बाद फिर भी उसने तो मरना है, तो मरने से पहले उसका दिल तो खुश हो जाए। माँ ने कहा, बेटी ने कहा, हाँ मैं जान ये तो क्यों कर लूंगी, मेरी जान छूटती है। तो उसने वो जहर एक एक चम्मच खाने में पानी में ऐसे मिला के और मतलब डालती, और वो बड़ी खुश होती बड़े एहतराम से। 2 हफ्ते गुजरे ना तो उसके शोहर का रवैया बदल गया और बड़ा उसके साथ प्यार से मोहब्बत से रहने लगा, और उसकी जरूरतें पूरी करने लगा, और उसका ख्याल रखना, और उससे पूछ के कि कल मैं आज क्या पकाएंगे, कल मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, कोई चीज कमी हो, जोड़ा कपड़े, हर एक चीज का ख्याल रखने लग गया। तो माँ के पास आई कि अम्मी जान मेरा शोहर तो ठीक हो गया है, और जब ठीक हो गया है तो अब क्या करें, मैं मजीद जहर का क्या करूं। बेटा का वो जहर नहीं था, वो चूरन था। वो क्या था? वो जहर नहीं था, अगर जहर होता तो तेरा शोहर मर जाता, वो चूरन था। चूरन मतलब मुख्तलिफ मसाले, जड़ी बूटियां, नमक, तुरश चीजें मिलाकर एक सफूफ बनता है, एक पाउडर बनता है, तो वो चूरन था बेटा, जहर नहीं था, जहर तेरी जुबान में था। हाँ, जहर वो बेअदबी का था, वो बदतमीजी का था, वो शोर की नाकदरी का था, जहर तेरी जुबान। तुमने अपना रवैया बदला, तेरा शोहर बदल गया। तो कभी कभार अपनी ऐसा होता है कि जहर का क्या करूं, माँ ने कहा, तो माँ का रवैया था वो जुबान, और उसका गैर मुनासिब रवैया था जो तुमने बदल लिया। रिश्ता न बदलो, अपना रवैया बदलो। मेरी बात समझ गए? रिश्ता न बदलो, अपना रवैया बदलो। रिश्ता न बदलो, अपनी आदत बदलो। रिश्ता न बदलो, अपने मिजाज बदलो। रिश्ता न बदलो, कुछ सब्र सीख लो। रिश्ता न बदलो, कुछ बर्दाश्त करना सीख लो। रिश्ता न बदलो, सहना सीखो। रिश्ता न बदलो, अपने मुनासिब और मनफी बातें और हर वक्त की चीख चीख को बदलो। खामोश हो जाओ, सह जाओ, बर्दाश्त कर जाओ। यही औरत फिर हुक्मरान होती है, यही फिर घर की मालकन होती है, यही फिर इसी से पूछ के सारा निजाम चलता है जो थोड़ा सा सहले। हमने अक्सर औरतों को देखा है जो बड़े उसके साथ जुल्म ज्यादतियां होती हैं, लेकिन जब भी उसके साथ जब वो थोड़ा सा सब्र कर लेती हैं, सह लेती हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको वो फिर मलका होती है, महारानी होती है, और उसकी महारानी होती है, और उस इलाके में उस घर पर ये फिर राज करती है। तो डियर सामेईन और डियर नाज़रीन, आपके सामने मैंने बहुत सारी बातें की, लेकिन कुछ बातें रह गई हैं कि 5 बातें शोहर से नहीं करनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि तमाम बातों को 1 घंटे के अंदर से मिले, क्योंकि फिर आपकी कॉल्स लेनी पड़ती है, कुछ सवालों के जवाब मैंने दिए। बहरहाल आखिरी कुछ बातें कि कोशिश करें मोहब्बत से एहतराम से, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत खां हूं और उसकी माफी चाहता हूं। मुझे किसी की तनकीद नहीं करनी, मैंने उनके लिए बातें की हैं जो घर बसाना नहीं चाहती, जो बात बात पे लड़ती हैं, बात बात पे गुस्सा करती हैं, हिम्मत तोड़ देती हैं, हौसला हार जाती हैं, और घर की बातें मतलब शोहर की और घर की बातें फिर वो अपने महके में जाके करती हैं, वालदैन से, बहन से, सहेलियों से, इससे फिर घर टूटते हैं, और शोहर को ताने बातें बदतमीजियां, तो इससे फिर शोहर के दिल में उसके लिए सिवाय मोहब्बत या अलहदगी के और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं बचता। तो बहने बेटियां सबर करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसी घर के अंदर जिसके अंदर आपके साथ ज्यादती होती है, आप समझती हैं कि आपके साथ ज्यादती है, नारवा सलूक होता है, नाइंसाफी होती है, उसी घर की आप मालकन होगी। तो आखिरी शेर सुन लें, फिर आपसे इजाजत चाहते हैं। अगर तुम मर्द को देख लो
کما

कमाते हुए। अगर तुम मर्द को देख लो कमाते हुए, निवाला गिर जाएगा हाथ से खाते हुए। हम कड़ी मुशक्कत से कमाकर कोई शिकवा नहीं करते, हम कड़ी मुशक्कत से कमाकर कोई शिकवा नहीं करते, और तुम थक जाती हो रोटियां पकाते हुए। फी अमानिल्ला, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी।

ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांस नशीला। हमारे साथ रहे।

घर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: अच्छी तरीके से खाएं।
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद आप अपने मैदे में गुंजाइश भी रखें।
1: अच्छा,
0: ठीक है कि मैं खाना मैंने खा लिया बस, ठीक है, ये नहीं है कि बाद में मैं और थोड़ा बहुत मुंह मारता हूँ बकरियों की तरह कि कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो वो आप अपने मैदे को फिर स्टोरी बना लेंगे।
1: बिल्कुल।
0: आप उसको उतना रखें कि आपका मैदे में गुंजाइश भी रहे। आप खाएं हर चीज, कुदरत ने बनाई है उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करें कि कुदरत का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें नेमतें दी। लेकिन एतदाल का भी बताया गया है कि एतदाल के साथ, तवाजन के साथ, तो इंशाल्लाह कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी।
1: हकीम साहब हमारे भाई हैं, उनका सवाल भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वो कहते हैं कि मेरा पेट फूलता जा रहा है जिससे मैं बड़ा बेचैन हूँ। उम्र उनकी तकरीबन 22 साल है
0: जी,
1: और टांग सिटी से हैं
0: जी जी।
1: तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे
0: उनके लिए? ये है कि आप एक देसी नुस्खा है, आप उसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आप सौंफ, अजवैन और सफेद जीरा,
1: सौंफ, अजवैन और सफेद,
0: ये आप हम वजन ले सकते हैं, यानी 20-20 25-25 ग्राम ले लें। इन तीनों को आप पहले तवे पे भून लें
1: जी।
0: भूनने के बाद आप इसको ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें, और आधा आधा चमचा आप तीनों टाइम ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, पानी के साथ, रात को भी, दोपहर को भी और सुबह भी। तो इससे यह है कि आपका जो पेट है वो फूलेगा नहीं, आपकी जो गैस है वो बनेगी नहीं। तो दूसरा यह है कि आपका खाना भी हजम हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: ठीक है, और अगर फिर भी आप इसमें कोई कमी पेशी महसूस करते हैं कि मुझे प्रॉपर तरीके से जो रिजल्ट मिलना था वो नहीं मिला, तो आप फिर एक मर्तबा दवाखाने का जरूर विजिट कर लें।
1: बिल्कुल।
0: हो सकता है कि इससे बेहतर चीज जो है वो आपके इंतजार में हो।
1: बहुत मेहरबानी हकीम साहब,
0: बहुत शुक्रिया,
1: आपने अपना कीमती वक्त रेडियो अमन 88.4 टांग को दिया और हमारे सुनने वालों को मुफीद मशवरे भी दिए और उनको एहतियाती तदबीर भी बताएं। नजरीन समईन, आप समात फरमा रहे हैं अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट की जानिब से अवेयरनेस प्रोग्राम। हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो आपको एहतियाती तदबीर भी बता रहे थे और आपके मसाइल सुन रहे थे। अगर आपके साथ किसी भी किस्म का कोई मसला है और आप इलाज कराना चाहते हैं तो आप अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक पॉइंट यानी कि खत्म नबूत चौक के साथ जो शवाल मार्केट है वहाँ पर सुबह 8 बजे तशरीफ ला सकते हैं। शाम 4 बजे तक हकीम साहब वहाँ मौजूद होंगे और वो आपका इलाज करेंगे। फिलहाल की घड़ी मैं आपका मेजबान मोहम्मद आदिल सियाल और हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब आपसे इजाजत चाहेंगे। कल इंशाल्लाह सेम वक्त सेम चैनल पे आपसे मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।